0: औरत के खूबसूरती के लिए हाइट चाहिए 5'4".
1: और फिगर
0: 36, 24, 36, नथिंग लेस नथिंग मोर।
2: लेकिन ये कैसे होगा?
3: White. Oh.

0: पूछो।
1: प्रणाम। मैं महर्षियों का चेला किसी की खातिर देखने आया हूँ आपका ये मेला।
2: महाराज।
1: यस
2: योगी।
1: दैट्स राइट।
2: वेलकम।
1: थैंक यू।
2: स्वागतम।